करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

0: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни.
1: This is AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: हेलो फ्रेंड्स, टोकरी रेडियो सुना माता माता स्वागत है। ते गल्ला बातें ते रोज के करने हैं। आज मैं सोचा तो सही, आज मैं जरा जम्मू शहर च घुमाई के आननी हाँ। अज एक सराटी हो गई जा जम्मू शहर के कुछ इलाके की, क्या आखद तुंदा क्या आखना है। मैं तो लगता है गल्ला बातें ते रोज के करने की ना, अज रेडियो सुनते सुनते अस एक कोई जगह के घूमी आज। तो मैं सोचा अज मैं तुसी ले चलनी हाँ बहुत ही खूबसूरत एक बाग च, जो कि जम्मू शहर का बड़ा ही प्रसिद्ध बाग है। इतने के नज़ारे जड़े ने बड़े ही मनोरम नज़ारे ने। तो सुनो पहले अज के एपीसोड का पहला गीत, तो फिर मैं तुसी ले चलनी हाँ बागे बहू।

डोगरी रेडियो सुनदा मता मता स्वागत है। ते मैं आ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते आ सैर करा दे हे बागे बहू दी। ए जम्मू शहर दा बड़ा गे अच्छा बड़ा गे सुंदर मनोरम दृश्य आला बाग है जो कि तवी नदी दे कंडे बसेदा है। ते इत्थे बड़े गे शैल शैल बूटे न, हर तरह दे बड़े गे प्रकार दे फुल न जो अखें गी बड़ा सुकून दिंदे न। कन्ने गे गन्ने पहाड़ियों दे विच इक इत्थे लेक भी है। ते कुल मिलाइए जेड़ा दृश्य है वह तो बड़ा गे अलौकिक दृश्य है। इत्थे तुस आखी सकदे हो तीन चीजें दा बड़ा गे सुंदर संगम है, धरती जल ते हरियाली। इन्हें तीनों दा जो प्रकृति ने इत्थे मेल पाए दा वह दसदा के आखने बड़ा गे शैल बड़ा गे सुंदर नज़ारा है। ये जेड़ा बाग है यह एक किले के अंदर बाहू किले के अंदर बने दा है। तो जियां कि मैं तुसें दस्या कि बहुत गे दी जो नज़ारे न इहदी बाग की जो संरचना है वह प्रकृति ने बड़े गे अनोखे तरीके की बनाई दी है। तो मन तो आत्मा दोनों प्रसन्न हो ही जाते हैं। इतने इतने बहुत अच्छी अच्छी तरह के एक फवारे लगे देन ते पौड़ी नुमा जी संरचना की गई है वह इस नज़ारे ही चार चन्न लाते हैं। प्रकृति का ओत प्रोत इतने का माहौल मने की मुग्ध करी ओढ़ता है। तो जो अस घूमने जाने उत्थे तो वो बाद घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो राती का इस बाग का नज़ारा वह तक

दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बशुस यमी प्रोग्रामक होस्ट रमेश मराठा, अजुक प्रोग्राम हेतुस हाजिर। दोस्तों कशीर हंस चकत सब्दान तो कशीर मंजस यारबल लगभग हर गाम शहर आसान। यारबल गयो येतस पूंय जमा ओ सब्दन या पूंय ओस वसान। अठस अस सान माज बेने बान चलान बे कथा बाथा करान या अस अस श्रांति करान बे अस पलवती चलान। यारबल सिटी आस आसन नग्ज आम तौर पे गामन मस नग्ज मज अस दपान पून हस छु वुजान वुजित ओस ये पून आसन बिल्कुल ठंड। अथ पूनिस मज अस अस श्रान ध्यान करान अस थो पनी कत बात जारी। वुले बोजो ये खूबसूरत

हेलो फ्रेंड्स, डोगरा रेडियो सुनम मता मता स्वागत है। मैं हूं तुंदी आरजे नेहा शर्मा, डोगरन सोल। ते मेरा जिहड़ा डुग्गर प्रदेश है ओ वीर ते वीरांगनाएं कन्ने प्रोचे दा है। इयां के एक डुग्गर प्रदेश दे शूर वीर है जिन्हें की दुश्मने भी सलाम किया। उनकी जिहड़ी वीर गाथा हैं वो अज भी आर्मी च मिलिट्री च लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर जरूर शेयर करते हैं। तो जिन्हें भी इतिहासकारों ने इन्होंने पता लगी गई होना है कि ये कौन है। जिया कि मैं तुसें आख्या कि वह पहले शूरवीर है जिन्हें दुश्मन ने सलाम किया। उनकी समाधि दुश्मन के इलाके च बनी ठीक युद्ध के बाद। तो ये जिहड़ा गौरव है अपने आप च, यह सिर्फ इतिहास च एक के बंदे गीत होएगा है। तो ये बंदा कौन है सोचो सोचो। तो पहले सुनो ये मिठा हरा गीत, उसके बाद मैं दसनी हाँ मैं कुंदी गल करानी हाँ।

बैक फ्रेंड्स, डोगरी रेडियो सुनदा मदा मदा स्वागत है। इतिहास गल करा दे है डुगर प्रदेश दे शूर वीर जिंदा नाम है जनरल जोरावर सिंह जी। इनका जन्म 15 अप्रैल 1786 होया हा। ये इंदू राजपूत फैमिली जन्मे है। हुन प्रेजेंट चो इलाका पौंदा है हिमाचल प्रदेश। इन्हें बड़े निक्के होंदे गे घर छोड़ी दिता हा। इन्हें बड़े गे निक्के होंदे तलवार चलाना धनुष विद्या सब सीखी लेता हा। ते लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि निका टूमर च कोई इन्ना कौशल क्यों हो सकता है। ते इंदे उसी कौशल ने उस शौर्य ने इन्हें राजा गुलाब सिंह हुंदे आर्मी च भजाई दिता। इंदी कार्य क्षमता इन्नी अच्छी ही कि सारे बड़ी तारीफ की। इन्हें बड़ी ही जल्द उस आर्मी का जनरल बनाई दिता गया। ते गुलाब सिंह जी ने इन्हें पूरा कार्यभार सौंपोड़िया रियासी इलाके का, अगे पिछे के इलाके का। बस फीक है।

0: 1950 में प्रवासी राज्य खुल के चर्चा की गई। पंजाब च इंचार्ज बदलन दे नाल ही कांग्रेस हाईकमान ने सूबे च पार्टी अंदरले टकराव नूं खत्म करन दी फैसला कुल पहल तेज कर दिती है। उपेश बघेल दी थां ते कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट नूं नवां इंचार्ज बना के पंजाब दी चोण ते संगठन दी टीम विच वी फेर बदल दा संकेत दे दित्ता है। पार्टी लीडरशिप पंजाब चोणां दे सियासी मैदान च अपने सिखरले आगू राहुल गांधी दे उतरन तों पहलां लंबे समय तों चल रहे टकराव दी सिरदर्दी नूं पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। इस दे मद्देनजर पंजाब कांग्रेस दे संगठन दा चेहरा बदले जाण दे बदल ते वी विचार वटांदरा कीता जा रहा है। सूत्रां अनुसार सचिन पायलट नाल सलाह मशवरा करके अगले कुछ दिन च इसका ऐलान कर दिता जाएगा। पिंड सेरों विच मुख्यमंत्री दे लोक मिलने समागम दौरान काला झंडा लहराउण कारण पुलिस हिरासत विच तशद्दुद दा शिकार होए नौजवान मोहनजीत सिंह दे हक विच ऐतवार नूं मोहनजीत इंसाफ संघर्ष कमेटी दी अगवाई हेठ SSP दफ्तर संगरूर दे सामने विशाल धरना लगाया गया। धरने च शामिल लोगों ने पग्गां ते कालियां पट्टियां बन के अपना रोस प्रगट किया। धरने दौरान सारे नुमाइंदियां ने मोहनजीत सिंह ते तशद्दुद करन वाले एक DSP, 2 SHO ते एक ASI खिलाफ बेअदबी कानून समेत होर धाराओं तहत केस दर्ज करन ते उन्हां नूं नौकरी तों बर्खास्त करन दी मंग कीती। 3 सितंबर तों सिविल हस्पताल संगरूर विच दाखिल पीड़ित मोहनजीत सिंह दी ऐतवार दोपहर अचानक सेहत बिगड़ गई, जिस कारण उसनूं पटियाला दे रजिंदरा हस्पताल रैफर कर दिता गया। अमरीका विच वोटर सूची की जांच के हुक्म दिते गए ने। इस नाल 10 लाख भारतीय मूल के वोटरां दे नां कट्टण दा खतरा पैदा हो गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमीग्रेशन एजेंसी इमीग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट नूं वोटर डायाबेस की निगरानी की जिम्मेवारी सौंपी है। इस काम लई कंप्यूटर ते डिजिटल टूल राही राष्ट्रीय पद्धर ते एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। वोटरां दी जानकारी नूं कंप्यूटर राही इमीग्रेशन रिकॉर्ड सिटीजनशिप रिकॉर्ड ते होर सरकारी डाटा नाल मिलाया जा रहा है। जे किसी वोटर दे नां दी स्पैलिंग पते जां होर जानकारी दा सरकारी रिकॉर्ड नाल सही मिलान नहीं हुंदा तां उसकी मुड़ तों डूंघी जांच कीती जावेगी। जे उह सही दस्तावेज पेश नहीं कर पाते तां उन्हां दा नां वोटर सूची तों कट दिता जावेगा। आखिरी खबर, अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कैनेडा की तुलना एक छोटे कुत्ते नाल कीती है। अमरीका नाल कैनेडा की ट्रेड डील ना होने से उन्होंने कैनेडा की तुलना वड्डे कुत्ते नूं परेशान करने वाले भौंकण वाले छोटे कुत्ते नाल कीती। एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि मेरे को एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता सी, पार्क में एक छोटा जा कुत्ता उसते लगातार भौंकता रहता सी, यह स्थिति मैं उसकी याद दिवाती है। उन्हें कनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से शानदार व्यापार समझौते को ठुकराने का दोष लगाया। दरअसल अमरीका से कनेडा विचकार 19 से 21 अगस्त दौरान हुई 3 दिन की ट्रेड गलबात तो बाद डील नहीं सी हो सकी। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि अमरीका ने आखिरी समय से डील की शर्तें बदल दी सन। उधर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों विचाले व्यापारक समझौता न होने तो बाद 22 अगस्त को कनेडा के 20 अरब डॉलर के समान से 50% टैरिफ लागू कर दिता सी। टैरिफ कैनेडा दे अमरीका भेजे जाने वाले कुल समान का करीब 5% ही बनता है। PM कार्डी ने इस टैरिफ नूं कैनेडा से हमला दस्सिया। इस नाल ही खबरों का बुलेटिन हुण खत्म होया। कल नवीं ताजा खबर लैके फिर तुहाडी सेवा च हाजिर होवांगा। सत श्री अकाल।
1: बहुत बहुत धन्नवाद भट्टी साहब, बहुत बहुत खूब तुसीं ਖਬਰਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ?
0: ਦਰਅਸਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ CM ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनो चिंत ना कोई, करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना शोर रेडियो आवाज़, ते मैं हाँ तुहाडे नाल संतोष कौर, ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने शो 'च।

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए, नचिए बाहच बाहपा, वे आ जा तो मैं नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: Toronto's number one station, AM 530.
4: Punjabi Vrata!

वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी दो बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। एक बजे वतनों दूर तुहाडे लई पेश किया जाएगा। हुण तो लैके दो बजे तक साडे स्टूडियो नंबर रहणगे 905-799-0999 799-0999।

0: अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नू सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, ओत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: देयर आर सिंगर्स, देयर आर परफॉर्मर्स, एंड देन देयर आर लेजेंड्स। Defined generations, the one and only Rahat Fateh Ali Khan, live in Toronto. With Shah Zaman Ali Khan, Sunday, September 27th at Scotiabank Arena. Presented by True Sound Live and Cellular Point. Rahat Fateh Ali Khan and Shah Zaman Ali Khan live in Toronto. For tickets, visit ticketmaster.ca.
5: Malli Tent Services tuhade special events se har ek size de waterproof tents provide karde ne. 10 by 10 feet to leke 40 by 100 feet de tambu ne. Tables te kursiyan vi naal leke aunde ne te tuhade backyard nu banquet hall vaangu banaunde ne. Fancy chairs vi available han. LED glow in the dark bani banaiyan bars, tables te kursiyan vi tusi rent kar sakde ho. Ajj hi Malli Tent Services nu call karo
3: 6479992569 6479 2569 6479 2569। डिस्काउंट लेके देंगे जेकर तुसी प्रोफेशनल लोग हो, जिवे इंजीनियर, टीचर, नर्सेस, डॉक्टर आदि, तां होर भी डिस्काउंट मिलेगा। लंबे समय तो मनु शर्मा होरी कम्युनिटी दे विच आटो होम कमर्शियल दे बिजनेस इंश्योरेंस कर रहे ने, अज ही इन्हां नूं कॉल कर लो

0: करो, कदों तो किस किराए दे छोटे जे घर च रवांगे।
1: ओए बस, मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नू कॉल करन तक।
2: तुसी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, इक्विटी टेक आउट, प्राइवेट मॉर्गेज या फिर
3: सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट, इक्विपमेंट लोन या रेंट टू ओन बारे सोच रहे हो, तो मॉर्गेज अलायंस दे नरदेव सिद्धू नू जरूर मिलो। नरदेव सिद्धू जे फड़न के तुहाडी बां, तो मॉर्गेज तो नहीं हो सकती ना।
2: या कॉल करो 647-294-5503, 647-294-5503।
3: भरोसे अते विश्वास वाला नाम नरदेव सिद्धू, लाइसेंस नंबर 10530।

0: 515-8000.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।
3: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहते हैं तो वो ते क्लिक करो, या फिर अपने आई पी टीवी बॉक्स के उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो, उत्ते तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7।
4: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
4: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
7: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one get one free every day sure 10 to sham 7 baje tak on dine in and take outs. Maza lavo Sunday no paratha plate, Monday manpasand kulcha plate, Tuesday chana bhatura, Wednesday lajawab veg thali, Thursday yummy haka thali, Friday maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian this sariya hi locations se. Dining, take out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab simple.